وشاء

0: क्रीम्स की, ब्यूटी क्रीम्स की बहुत अच्छी रेंज, और सुपर वाई की हल्दी चंदन ब्लीच क्रीम भी आती है.
1: शहर में एक रात सुहानी
0: है. इसके अलावा हेयर रिमूवल क्रीम भी आती है सुपर वाइट वालों की, और भी बहुत सारे ब्यूटी फाइव प्रोडक्ट्स आते हैं कि जो कि आपकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं. तो मतलब कि इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ा है जो कि ना बनाया हो. इन्होंने पेट्रोलियम जेली भी बनाई है. अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोग लिए पेट्रोलियम जेली भी बनाते हैं, और अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे वेरियंट्स के अंदर बनाते हैं, जिससे आपको मिलते हैं बेहतरीन रिजल्ट.

0: Okay, जी, beautiful song. और इसके साथ साथ सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के बहुत खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स. इस्मार किशोर का कमेंट अच्छा ये वही वाला है, नहीं दूसरा है. अच्छा, सिग्नल वाले वॉल्यूम बढ़ा दो.
1: कोई मजनू, कोई राज,
0: सिग्नल का कोई वॉल्यूम नहीं होता, सिग्नल के सिग्नल ही होते हैं.
1: इस पल को ये बीत ही जाना है,
0: उनकी अप्रोच बढ़ानी पड़ती है.
1: सब यही रह जाओ.
0: और ये मेरी अप्रोच में बिल्कुल भी नहीं है. मेरी अप्रोच में सिर्फ इतना है कि मैं आऊं, मैं प्रोग्राम करूं, अच्छा सा और मैं चली जाऊं. अच्छा, इसके अलावा स्मार्ट किशोर कहते हैं यहाँ रुकने की वजह नहीं रखती आप, सलाम दुआ के बाद क्या बात करनी है या ऐसे ही मुंह में दही जमा के रखनी है. अच्छा, इसलिए आप कॉल पे आने से डर रहे हैं ना. आपसे हम गाने वाने सुन लेंगे, आपसे हम कुछ ना कुछ मतलब करवा लेंगे, बेफिक्र हो जाए. ठीक है, आपके मुंह में हम दही नहीं जमने देंगे. स्मार्ट किशोर मोहसिन अली हमें सुन रहे हैं. मोहसिन अली कहते हैं गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे आरजे, बड़ा जबरदस्त शो, थैंक यू. खाली जुनी जो कहते हैं सी यू लेटर इवन नेक्स्ट. क्यों, अभी क्या मसला है? अच्छा, स्मार्ट किशोर कहते हैं आप रात में बाहर सोती हैं या ठंडा ज्यादा खा लिया है? आवाज थोड़ी भारी लग रही है. बस ये टैलेंट आप में ही है कि आप भारी और हल्की आवाज को पहचान सके. हाँ, ये है कि हो सकता है ऐसा हो,
1: प्यार तो कोई भी मलाल नहीं,
0: शायद थोड़ा बहुत है भी, लेकिन खैर कोई बात नहीं. आवाज भारी हो या हल्की, अच्छा मेरी आवाज वो वाली है भी नहीं कि जो भारी होने के बाद बुरी लगे या जो जुकाम होने के बाद बुरी लगे. ये एक चीज है मेरे अंदर जो कि गॉड गिफ्टेड है ना. पीछे पीछे हो जाओ सारे जेड़े होंदे आवाजात में. ब्यूटीफुल लाइन 03000113488 के ऊपर कॉल्स लेने जा रही हूँ और कॉल्स बहुत सारी. जैसे सुपर मार्केट प्रोडक्ट्स बहुत सारे, वैसे ही आप लोगों की कॉल्स भी बहुत सारी.

0: कुछ लोगों की जुकाम में आवाज और प्यारी हो जाती है। वो कौन से कुछ लोग हैं? खाली जुनेजा कहते हैं आपका वाहिद चैनल है जहां लिसनर्स के मैसेजेस इग्नोर नहीं होते, पढ़े जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपके पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो इग्नोर नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा जी कॉलर मेरे साथ लाइन पे मौजूद होंगे नेक्स्ट, और मैक्सिमम कॉलर्स को लेने की मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत कम कॉल्स ली हैं। सो नेक्स्ट कॉलर, हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके, सुपर वाइप के कौन से प्रोडक्ट यूज किए आपने? लाड़काना वालों के लिए तो हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ, स्पेशली सखर और लाड़काना वालों के लिए, तो वो क्यों नहीं डायल कर रहे आप? तो जरूर करें, मैं अभी बताती हूँ, आप वो नोट डाउन कर लें और उनको बताएं कि लाड़काना में यहाँ पे नहीं मिल रही है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी अगली बार।
1: आपका प्रोग्राम जबरदस्त चल रहा है, लाड़काना ऐसे कुछ आप नहीं है।
0: लाड़काना, सॉरी क्या कहा आपने?
1: लाड़काना जगह ऐसे वो साफ लगती है।
0: अच्छा, स्ट्रीमिंग साफ नहीं आ रही?
1: ऐसे साफ नहीं है,
0: FM साफ नहीं है, और ये बहुत सारे लिसनर्स से मुझे सुनने को मिल रहा है। खैर, और कुछ कहेंगे? ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जैन अली का कमेंट आया है, किसी को पानी के लिए किस्मत चाहिए, इंतजार करने से वो लौट के नहीं आता। अच्छा, वेरी नाइस।
2: दीवाने सबका फसाना है, कोई मजनू
0: कोई आशिक, यहाँ कोई दीवाना है। गाना खत्म हो गया हमारा, इसलिए हम आतिफ असलम का ही नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे। एंड ये वाला नेक्स्ट सॉन्ग जो कि हम प्ले कर रहे हैं, और ये वो नहीं है जो कि मैंने सोचा है, मतलब जो मैं चाह रही थी प्ले करूँ, ये वो वाला है ही नहीं। सो इनका एक सॉन्ग है, हाँ मिल गया मुझे, हूँ इश्क में, ये वाला भी इनकी एल्बम का बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और ये वाला हम सॉन्ग सुनेंगे और इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे 03000113488 और सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए 03147745462।

बस ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ मुझे नजर आया है एक और सॉन्ग, और ये है जी लेटेस्ट सॉन्ग जो कि मैं प्ले कर रही हूँ, और साथ साथ ऐसे ही अगर मुझे अच्छे अच्छे गाने नजर आते रहेंगे तो मैं डेफिनेटली प्ले करती रहूंगी, और टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है, टाइम को अगर देखा जाए. एंड दिस सॉन्ग इज बाय आशिर वजाहत.

इसके अलावा सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, आगे पीछे हो गया, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम जो कि आप यूज कर सकते हैं जी कोरियन ग्लास स्किन हासिल करने के लिए, और कोरियन ग्लास स्किन आएगी राइस की जो खूबसूरत से एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, और सुपर वाइट वाले असर कॉस्मेटिक्स वाले यूज करते हैं जी सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में, राइस की बहुत सारी खूबियां, और साथ में इसका फेस वॉश भी इसी वेरियंट का है, सुपर वाइट राइस फेस वॉश जो कि आपकी डल स्किन को खूबसूरत बनाएगा, आपकी डल स्किन को लाइटिंग अप करेगा, ब्राइटन अप करेगा, फेयरनेस आएगी, पिगमेंटेशन है वो जाएगी, पिंपल्स है वो खत्म होंगे, ठीक है, ये एडिशनल जो प्रॉब्लम्स है ये भी खत्म होंगे, और साथ में कोरियन ग्लास स्किन आपको मिल जाएगी। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही मार्केट जाएं और लेकर आए सुपर वाइट के इन प्रोडक्ट्स को जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, और याद रहे इनके तमाम प्रोडक्ट्स के साथ आप लोगों ने लेना है सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर। सो अगर आप इसको ऐड करते हैं किसी भी अपने मॉइस्चराइजर में, किसी भी क्रीम में, किसी भी ब्लीच क्रीम में, या फिर अपनी पेट्रोलियम जेली में, तो उसके रिजल्ट डबल हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लगता है, और स्किन ब्राइटन अप होती है, स्किन लाइटन अप होती है, डल स्किन जो है रिपेयर होती है। तो ये खास बात है एक, और ये एक किस्म का जो जादुई ब्यूटी सीरम बूस्टर है सुपर वाइट अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज ही मार्केट जाएं और इन प्रोडक्ट्स को लेकर आएं, और इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें, एंड देन फीडबैक भी ज़रूर दें। और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है जी, सो हम जाएंगे ज़रूर, और वापस आने के लिए जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, ज़िंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हम लास्ट में प्ले करेंगे एक और खूबसूरत सॉन्ग, और इसी के साथ प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह।

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
1: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
0: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
0: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है। सुपर वाइट।

खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ये कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं। भाई साहब अगर आप चाहते हैं भाई आपके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा निखार आना चाहिए या फिर आपके चेहरे पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ने आप लोगों को परेशान कर दिया है, चेहरे के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर लेना है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज के फौरन बाद ही आप लोगों को इतने जबरदस्त इतने शानदार से प्रोडक्ट्स जब मिल रहे हैं तो उसका यूज कीजिए और आप अच्छा वाला जो है ना वो निखार हासिल कर सकते हैं और अच्छी वाली खूबसूरती भी हासिल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, यानी कि जब आप खूबसूरत बनना चाहते हैं खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर बनिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिए। ओके जनाब, यहाँ पर बताएंगे तफसीलन बहुत सारी बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए सवाल क्या होने वाला है वो सबसे पहले बताते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए और आप काइंडली टॉपिक के ऊपर भी बात कर सके। ओके जी, तो आज के सवाल की जानब आते हैं। तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। हाँ जी, और आप देखकर उसे बोलेंगे कि ये दिखता भी तो मछली की तरह है लेकिन क्या ये मछली नहीं है, लेकिन हाँ वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएंगे कौन सा जानवर पानी में रहता भी है लेकिन वो मछली नहीं है और शायद दिखता भी मछली जैसा है लेकिन वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएं जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR के सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 2821 पर। ओके जी, 881 पर मैसेज भेजेंगे तो आपका मैसेज हमारे पास आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जी लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। कितने सारे यहाँ पर देखो लोग हैं जिन्होंने कॉमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया। अरे कंजूस, लाइक भी करना होता है। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। हाँ जी, ये बोनस पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट करते जाइए और मुझे बताइए कि कौन सा जानवर है जो पानी में तो रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। उनखा अलावा तव सी प्रोग्राम में शामिल आयो बाबा, बिल्कुल तवजा प्रोग्राम में जी ना फीडबैक्स असा शामिल प्रोग्राम रखना, पर जिन जिन मानन अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज ना ही कयो बाबा, तमाम छो न कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज न करण की वजह यह है तमाम वर्त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमाम जी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल को न थिया है, तो उन्हें चलाए तमाम छा करना, तमाम के नंबर्स बुधाया भाई, नंबर से मथा तमाम राबतो करे वठो, और जदी तमाम राबतो करे वठना तो तमाम जी करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराई हुई। सो नंबर्स आए नोट करे वठो, ओके जी नंबर से 033-27-38-43-09 बड़ी 300 है 73-84-309 एंड बियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बड़ी 312 50-25-970 ही नंबर आहे जेके तमा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था, बिना के देरी जे बिना के टेंशन जे पुस्ता नंबर से राबतो कयो, तमा कॉल भी करी सको था, तमा मैसेज भी करी सको था, तमा बुधायो बाबा तारिक भाई वेठो आहे तमा जे इंतजार में, तो केमल सना सोना लिसनर कॉल कन था आई एस ऑन जिला करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो था, सो तमा भी थोड़ी हेल्प कराए वठना कयो असान जे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो से तमा के वठन में आसानी थे, आई तमा जे आसपास जे मानन के भी खबर पवे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने असान जे एरिया में भी मिलन था। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर बताइए अभी हमारे साथ मौजूद इस प्रोग्राम का हिस्सा है। उनका अलावा अलीशा हमें ज्वाइन कर चुकी है, सबसे पहले पोस्ट पर मौजूद, कहती है कि हमें थाम के रखना, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे, कहती है उन्हें जब देखते हैं तो बदल जाते हैं ये लहजा, जबां पे आ ही जाते हैं अदाएं शायरों जैसी, क्या बात है जी क्या बात है, लिखती है कि मैं तेरे ख्यालों से निकलूं तो जमाना देखूं, ओ यह गाल का यही नहीं,
आमिर राज पर हमारे साथ कहते अस्सलाम वालेकुम, पटीदन शॉप है, मेरी पटीदन पे शॉप है और डीज कैन ब्यूटी क्रीम चला रहा हूँ, आबिद भाई ने अवेलेबल करवाई है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। ओके जी, आसिम राज पर जो है वो उनकी पटीदन में शॉप है तो वहाँ पर आप लोगों को डीज कैन ब्यूटी क्रीम और डीज कैन का फेस वॉश मिल जाएगा। तो जितने भी पटीदन वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आमिर भाई की शॉप पर जाकर डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, ऐसा ही ना आमिर भाई, वेलकम कहते हैं आप। और हमारे इरफान सियाज साहब हमारे साथ कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट्स डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और गुड आफ्टरनून मैम आरजी, गुड आफ्टरनून यू सर। और जेन लिखते हैं कि पकड़ कर नब्स मेरी, डॉक्टर ने कहा अच्छा लड़कियों की भी नजर लगती है, कहते कि माना कि तुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मैं तो मतलब ही हूँ, मुझे तो तू चाहिए, कहते हैं कि जो तुझे देखकर फिर किसी और को भी देखे वो तमाशाई है, तालबे दीदार नहीं, सही कहा आपने। और अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून वेलकम कहते हैं भाई, हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खुश आमदीद। मीर मुमताज अली जतोई, वालेकुम अस्सलाम, अदी तमाजी सफा भलिया, कहते हैं अल्लाह पाक तमाम की खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहो, माशाल्लाह बेहतरीन शो, जबरदस्त कंपेयरिंग, गुड। आगा खान जतोई, लाड़काने खान, मीर मुमताज अली जतोई, मोहम्मद मुदस्सर, एस मुमताज जतोई भी तवा सगड़ा है, सभिनी की चौथा भली करी आया, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो मुमताज वाह कोन मुखे बुधाए जो ऐं तव्हां जो मोहबत हुआ तव्हां लाड़काने खां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पियो। तारिक भाई बि हमारे प्रोग्राम में मौजूदु है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा, आउं रेडी तयार, खुशबू बि लॻाए आयो आहियां, तोखे अचे पई खुशबू, वाकई मूंखे खुशबू अचे पई जी। और हमारे साथ गुड आफ्टरनून, हाई हेलो सदरा मुस्कान जी, आप कैसी, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, वेलकम कहते हैं जी आपको। अजनबी लड़का लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मुस्कान, ये सॉन्ग चलाना, मैं कोशिश करूंगी जी, गाने आके लगा देंगे। वासु भाई हमारे साथ हैं, हेलो, मैं ठीक हूँ वासु भाई, आप कैसे हैं। आप ऐसा करें, सारे लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, और साथ साथ मुझे बताइए कि भाई साहब डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके या नहीं, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जब आप डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे ना तो सुनने वाली समाजों को भी पता चलेगा वाकई भाई डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं वो लोगों के साथ ना शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है, लोगों को पता चले कि भाई साहब डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर दर्दी दिल हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं, देखती हैं गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आरजे, कैसी हैं आप, मजे में जी मजे।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: खुश्क ऐं बेरोनक की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट ड्राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रीस्टोर करे हुनजी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: कितनी कल वेस बैठा रोंदा दारो दारो हुसैन दादा बेकरार हुसैन ओ होय मैं दाया

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माती नूरियाबाद और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई कई मरतबा हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा चुके होते हैं लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऐसा होता है कि वक्ती तौर पर हमें गोरा बना देते हैं खूबसूरत बना देते हैं लेकिन जब हम देखते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो कि हमारी खूबसूरती का ख्याल भी रख रहा है और हमें खूबसूरत भी बना रहा है तो आपके पास यस डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की यही क्वालिटीज है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर स्किन के मुताबिक तैयार हुए हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये जनाब आप लोगों के लिए जो तैयार हुए हैं उसे मर्द हजरात खवातीन सब लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ये भी खास बात है सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसे आप सब लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि इससे स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया है तो आप लोगों के लिए ये भी कोई टेंशन की बात नहीं हो गई कि हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आप बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोगों को मिल रहा है विटामिन ई बीट्स अल्फा अर्बोटीन कोजिक एसिड ग्लूटाथायोन और माइक्रो बीट्स ये जो तमाम चीजें हैं ना ये ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और वाकई जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप पाकिस्तान में इतने सारे फार्मूले देखते हैं क्रीमें देखते हैं आजकल को सब किसी को आपने देखा होगा कि भाई मैंने ये भी चीज जरा देखी थी कि दुकानदार भी आजकल जो है ना वो फार्मूले बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई फार्मूला परचेज कर रहे हैं या फिर आप लोगों को पता नहीं कि वो जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं वो किस तरह से है अगर ऐसा है कि उसको फार्मूले को लगाकर दो लोगों को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो ये चीज बिल्कुल भी आप लोगों के चेहरे के ऊपर सूट नहीं हो पाएगी कि उसे रिजल्ट अच्छा मिला है तो हमें भी अच्छा मिलेगा क्योंकि जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर मेडिकेटेड फार्मूले नहीं होते उसके अंदर ऑल स्किन टाइप के लिए फार्मूले नहीं होते तब तक वो आप सब लोगों को रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ऑल स्किन टाइप के लिए हो मेडिकेटेड फार्मूला हो और हर स्किन के लिए सेफ हो चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन टाइप या फिर नॉर्मल हो तो हर स्किन के ऊपर यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना इसकी जो एडिशन रखी गई वो इसलिए रखी गई है ताकि आपका जो ये रिजल्ट है ना आपको रिजल्ट 10 गुना ज्यादा मिले और फेशियल वाला रिजल्ट मिले क्योंकि कई मरतबा हम ये सोच रहे होते कि भाई काश हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो हमें लगाने के लिए जो है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े पैसे भी ज्यादा नहीं हमारे खर्च हो बस हम लगाएं तो हम खूबसूरत हो जाए वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। तो जनाब आपके पास मौजूद है डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों का यूज कीजिए और आप अपने चेहरे पर देखेंगे एक हसीन सा निखार एक खूबसूरत सा ग्लो और आप हो जाएंगे सबसे ज्यादा हसीन चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं सब लोग ही

जा सकते और खूबसूरत हो सकते हैं। तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती को मजीद दिखाने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा। आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी जल्द की जो शख्सियत है ना उसमें ताजगी आ जाएगी, आपका एतमाद भी बढ़ जाएगा। और अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन को ज्यादा खास बनाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लगाना कैसे है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप लोगों के लिए वाजे हो जाती है कि डी स्किन फेस वॉश जो है ना, ये आप लोगों की स्किन को डीपली क्लीन करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी आप सोप वगैरह लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं, उसमें जो असर आपको मिलता है ज्यादातर ऐसा होता है कि जब सर्दियों का सीजन आ जाता है तो आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है या इस तरह का कोई सीन हो जाता है, आपको लगता है कि सर्दियों में कुछ अलग ही लगाना चाहिए, कोई अलग ही प्रोडक्ट का हमें जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस मरतबा सीन जरा चेंज होने वाला है क्योंकि आप इस मरतबा डी स्किन का फेस वॉश लगाने वाले और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, चाहे आप सर्दियों में लगा रहे हैं चाहे आप गर्मियों में लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी। जो आप सर्दियों में देखते ना कि हमारी स्किन ऐसे ड्राई सी चुकी है, उसके ऊपर अलग से आपको लोशंस लगाने पड़ रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ रहे हैं, तो जब आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो डीपली वैसे ही मॉइस्चराइज हो जाती है, क्लीन हो जाती है, पुरकशिश हो जाती है और जबरदस्त हो जाती है। तो आप सब लोग इस मरतबा ट्राई करके देखिए डी स्किन का फेस वॉश, ताकि आपको भी पता चले कि डी स्किन का फेस वॉश जो है वाकई कमाल का फेस वॉश है। और आप इसे सब लगा सकते हैं, जैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सब लगा सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को भी आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल आपके फीडबैक्स मुझे मिलते जा रहे हैं, आप लोगों के साथ बातें होंगी। ये आप लोगों को ही बताया जाता है कि जब आप मार्केट जाएं तो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास निशानी है, जिन लोगों को नहीं पढ़ना लिखना आता और उनको दुकानदार आसानी से बेवकूफ बना देते हैं, तो आपके लिए ये आसानी भाई इनफ हो जाती है कि आप अगर जाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर औरत का फोटो है, ठीक है, एक प्यारी खूबसूरत सी डॉक्टर है, उसका फोटो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी पर है, तो आप ये देखकर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप यूज कीजिए, सारे लोग ही यूज कीजिए भाई, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आकर बताते हैं कि बाजी असां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम भलो रिजल्ट दिनो आए, असां चौथा तवां सभिनी खे भलो रिजल्ट मिले ऐं तव्हां सभु सोणा थी वञो। उन खां अलावा अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हां जे लाइ नंबर आहिनि, नोट करे वठंदा कयो, उन्हनि ते राबितो कयो, कॉल कयो, मैसेज कयो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण चाहियो था ऐं तव्हां जे करीबी जनरल स्टोर ते बि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अवेलेबल थी वञनि। पहला नंबर है 03-12-50-25-907 बोली 312 50-25-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था। उन खां अलावा दीपक भाई असांजो प्रोग्राम ॿुधे वियो, दीपक भाई हमें डेरा आला यार से सुन रहे हैं और दीपक भाई जो है ना वो हमारे बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल कर रहे हैं, और जो लोग हमें डेरा आला यार से सुन रहे हैं वो दीपक भाई की शॉप से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। डेरा आला यार वाले जितने भी लोग हैं ना, वो आपको नंबर बता रही हूँ, दीपक भाई का ये नंबर है, आप जितने भी डेरा आला यार वाले लोग हैं वो दीपक भाई का नंबर डायल करके और उनसे भी जो है ना वो मालूमात ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी चाहिए। तो ये नंबर भी जरा नोट कीजिए। ओके जी, नंबर है 03-12-46-111-90 03-12-46-111-90 बड़ी 312 46-111-90
ये नंबर आहे दीपक भाई जो जेको तव्हां डायल कंदा 13,000 वारन लिसनर्स जे लाइ आहे. सो आप जरूर से इस नंबर के ऊपर राता कीजिएगा और दीपक भाई हमारे बड़े अच्छे हैं जनाब, वो आपको रिस्पांस देंगे और आपको बताएंगे कि कहां कहां से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश परचेज कर सकते हैं. और दीपक भाई के बेटे हैं जनाब मेहरवा, कितना खूबसूरत नाम है माशाल्लाह, वो भी हमारा शो सुन रहे हैं, दीपक भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं. आप दोनों को वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया बंडल ऑफ थैंक्स, आप हमारे साथ मौजूद हैं. और ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से मेहनत करते रहिए. बिल्कुल जी, आप जितने भी सुनने वाली समाते हो सब लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए. अब तो भाई मौसम भी तब्दील हो रहा है तो आपको जरूरत है भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, लाजमी जाइएगा परचेज कीजिएगा. और जनाब जितने भी हमें सुन रहे हैं लोग जो कि हमें सुनते हैं जनाब 13,000 से, वो दीपक भाई का नंबर डायल करके अपने लिए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें कहां से मिल सकते हैं.

मिल जाएगा। रुडीज स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर रुडीज स्किन फेस वॉश हो, आप बस लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है, बढ़िया हो गया ना।

खूबसूरत सा गाना बहुत ही हमारे खूबसूरत लिसनर्स एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मोहम्मद जमान आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, ठीक हो गया जी। जुबेर सरवर हमारे साथ है, जुबेर सरवर लिखते हैं फ्रॉम मोरो जी, रेडियो की दुनिया में हमें परिंदों सा दिल देकर परिंदों की बस्ती में उतारा गया है। खुश हो जो सदा सभी तमाम विभाग खुश हो जो आई तमाम एड़ी भली नंदड़ी नंदड़ी दिल रखो। तो ये बात तो है ना कि जन्नत में तो वही जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की जरा नाजुक होते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये दिल जरा संभाल के रखिएगा। मुकुल उमरानी हमें सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हया मानो हमारे साथ कहती है कि हम जैसे नहीं हो सकते आप हमारे अंदाज चुरा लेने से, ओ ईहा गाला बिल्कुल सही। और हमारे साथ हैं जी अल्ताफ अली गादी बलोच कहते हैं हाय सदरा जी, एक तो जी जी आपका सवाल हमने देख लिया जवाब यानी कि, और अच्छा है आप हमारे साथ। मुझे बताएं जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई आप इधर खाली सोच रहे। निजाम भट्टी कादरी हमारे साथी वाले को मसला मटियारी का तमाम संगीत ज्वाइन किया हुआ है। प्यारा भाई तो मुझे मोहबत हुआ तांगे प्रोग्राम पसंद अच्छी पे हजार भाई एनो वनो कॉमेंट लिखो थी कौन दू। ये सर मुझे आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में शेयर कीजिएगा यही वाला कॉमेंट, ठीक है। और गुलमीर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और हमारे साथ हैं जी गुलमीर भाई, बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा ले। बख्त अली सियाल हमें सुन रहे हैं भाई को वेलकम हो गया। अलीशा कहती है कि मामू परवेज के लिए थारो शाह में फेस वॉश अवेलेबल करवा दें डियर सिडो। जी जी फेस वॉश भी हम जो है ना वो अवेलेबल कराते जा रहे हैं। फेस वॉश जो है ना वो थोड़ा ऐसा है कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहले आई और फेस वॉश जो है वो अभी अभी इन होता जा रहा है मार्केट के अंदर, तो जहां जहां पर फेस वॉश की कमी है तो आप बताइए ताकि हम वहां वहां पर फेस वॉश भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते रहे, ताकि आप लोग दोनों चीजें साथ में लगाकर आप अच्छा वाला जो है ना वो निखार हासिल कर सके। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाँ एक हाँ लिंक मोकलिया तो अगर मुझे जवाब सही हो जाए हलाई बता जो गानों। और स्मार्टो गोपाल कहते हाय वालेकुम अस्सलाम माय फेवरेट आरजे सिद्रा मुस्कान, आई एम लिसनिंग योर शो इनकमर सिटी। ओके जी आपको भी वेलकम हो गया। फायजा का गाना कोई अच्छा सा सुना देंगे आपको, और आप जरा प्रोग्राम में बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए और टाइम हुआ है जनाब न्यूज ब्रेक का, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूँ, सो यही रहिएगा।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
7: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
8: एमरजेंसी वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ के बीके की सूरतहाल अहम इजलास अज थो वजीर आजम हाउस में थन्दड़ इजलास में वफाकी वजीर घरू वजारत जहा अमलदार शरीक थन्दा के बीके की सूरतहाल बाबत अहम फैसला कया वा एमरजेंसी लगान की सूरत में मंजूरी लाबिन जो इजलास में तलब किया वो

पीपल्स पार्टी गवर्नर राज जहिड़े कंहिं बि कदम जी हक़ में नाहे। पीपल्स पार्टी केपीके में को बि गहराईनी कम न थियण ॾींदी। पीटीआई खे सोचणो पवंदो त उहा मुल्क केॾांहुं वठी वञी रहिया आहिनि। पीटीआई क़यादत खे दहशतगर्दी जे नतीजनि बाबति सोचणो पवंदो। सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह त सूबे में कणक जी खोट नाहे, अटे जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि। क़ीमतनि में वाध जा कारण कणक जी खोट न पर तेल जे अघनि में वाध ऐं ॿिया आहिनि।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नेशनल आईटी पार्क जो इफ्तिताह करे छो तकरीब के खिताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आईटी पार्क नौजवान लाइ तरक्की जा नवा दग खोली नेशनल आईटी पार्क मुल्क की तरक्की खुशहाली लाइ भी अहम साबित हों आईटी पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी के शोबन में अहम अगभराई है। दक्षिण कोरिया के तजुर्बे के नतीजे में लाहौर में पेरों भेरों एसी बसेज आयु टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारती असल ताकत है।

अमेरिकी सदर एक भेरो ॿीहर ईरान ऐं यूक्रेन जंग जल्द ख़तम थियण जी उमीद ज़ाहिर करे छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त हाणे ॿिन्ही जंगनि जे ख़ात्मे में घणो वक़्तु न लॻंदो। ॻाल्हियुनि ज़रिए जल्द जंगियूं ख़तम थींदियूं या वरी असां फाते साबित थींदासीं। मां तारीख़ में सभ खां वधीक इंसानी जानियूं बचाइण वारो शख़्स आहियां। डोनाल्ड ट्रंप रूस पारां अमेरिका खे डीज़ल फराहम करण वारे ऐलान ते बि मास्को जा थोरा मञिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां शुगर जी माहिर डॉक्टर जी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज़ शरीफ़ पारां शुगर जी रोकथाम लाइ जाम हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। वज़ीर आज़म चयो आहे त शुगर जहिड़े मर्ज़ खे रोकण लाइ आगाही ॾियण सां गॾु तिबी तहक़ीक़ खे बि तेज़ कयो वञे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी पारां तरक़ियाती मनसूबनि जो दौरो। मोहसिन नक़वी ऐं तलाल चौधरी मार्गला रोड जे मोटरवे ताईं वाद में संगजानी इंटरचेंज जो जाइज़ो वरितो। मनसूबनि ते डबल शिफ्ट में कम जारी रखण ऐं कम तेज़ करण जी हिदायत। मोहसिन नक़वी चयो आहे त रिथा सां इस्लामाबाद जे शहरनि खे मुतबादिल रस्तो मिलंदो।

पढ़ाई लाइ अमेरिका वञण जे ख़्वाहिशमंद इस्लामाबाद जी शागिर्दियाणी 5 लख जो फ्रॉड थियण ते आपघात करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त लाइबा हिकु एजेंट खे अमेरिका जी यूनिवर्सिटी में दाख़िला लाइ 5 लख ॾिना। खीर विकिरो कंदड़ शख़्स जी नियाणी पंहिंजे मामे खे ऑडियो पैगाम में चयो त बाबा सदमो बर्दाश्त न करे सघंदो ऐं मरी वेंदो। गुज़िरियल ॾींहुं लाइबा जो वण में टंगियल हालति में लाश मिलियो हो। शागिर्दियाणी परे में पढ़ाईअ लाइ एजेंट खे 5 लख ॾिना हुया। पिंगरियो में शादी सब डिवीजन जो पाणी बंदि करण ख़िलाफ़ तेल जे आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ज़रिए पाणी जी बंदिश ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज करे धरणो हयो। आबादगारनि मूजिबि पाणी बंदि थियण सबबि बीठल फसुल सड़ी रहिया आहिनि। नवां फसुल बि नथा पोखे सघूं। पाणी खोले परेशानी ख़तमु कई वञे।

मिठाणी भरसा नवा जतोई में चोरी की कोशिश दौरान भागन की सुजाग थियण ते चोरन की फायरिंग बालड़ी सख्त जख्मी नवा जतोई के चोर राशिद जरवार के घर में दाखिल थिया तो भाग्या सुजाग थी पाया। चोरन की फायरिंग में अनमोल जरवार ए सुरैया जख्मी थी गणती वाली हालत में अस्पताल मुंतकिल। धाबे जी में मामूली गाल्ह तमाम बिन धुरी में

0: छाछरो में सिंध पुलिस भर्ती लाइ टेस्ट पास वेटिंग उम्मीदवारनि जो एतिजाज। छाछरो ऐं ॾाकिले तालकनि जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जी पुलिस वेटिंग उमेदवारनि ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एतिजाज कयो। मुज़ाहिरनि मूजिबि पुलिस में जायूं ख़ाली आहिनि, पोइ बि नौकरियूं न पयूं ॾिनियूं वञनि। उमरकोट में वुमेन पुलिस जो शादी तकरीब ते छापो। नंढी उमिरि में थींदड़ शादी रोकराए छॾी। घोट ऐं कुंवार वालदेन समेत गिरफ़्तार। निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी समेत पंजनि ॼणनि ते केस दाख़िल कयो वियो। वुमेन पुलिस जी जेवण कॉलोनीअ में कार्रवाई कंदे 15 सालनि जे घोट दिलावर माछी ऐं 13 सालनि जी कुंवार नाज़िया माछी समेत 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो। एस एच ओ वुमेन जी फरियाद ते चाइल्ड मैरिज एक्ट तहत केस बि दाख़िल कयो वियो। पानामा में 7.7 जी शिदत सां आयल ज़िलज़िले समूरे ॿेट खे लोॾे छॾियो। केतिरा ई घर पट ज़मीननि में बि ॾार पइजी विया। जानी नुक़सान जा इतला न मिलिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadid formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
6: Super White!
7: Har din, har peher, zindagi ki leher. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.

जो रिजल्ट हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी एड रखी गई है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो फेशियल वाले मिलते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना सिर्फ विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है, बल्कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को प्रीमियम फार्मूला बनाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ऑल स्किन के लिए सेफ भी है और ये आपकी स्किन की हिफाजत भी करता रहेगा। तो आप लाजमी से इस्तेमाल करके देखिएगा, खूबसूरती हासिल करना और खूबसूरती को मेंटेन रखना ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो जाती है। खूबसूरती हासिल तो आप वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन रखना थोड़ा सा अजीब सा काम हो जाता है, क्योंकि अगर आप काम भी कर रहे होते हैं और काम करने के साथ साथ आपसे स्किन केयर नहीं हो पाते हैं, स्किन केयर अगर आप नहीं करते हैं सही से तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं भाई आपके चेहरे पर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप अप्लाई करें जो कि आप अगर इस्तेमाल करते रहें तो आपको जो खूबसूरती मिली है वो, अगर ऐसा होता है ना कि हम थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देते हैं तो उससे ये इफेक्ट आपके चेहरे पर ना आए कि भाई आपके चेहरे की स्किन खराब हो जाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो सिर्फ खूबसूरत होती रहेगी, खराब होने के तो चांसेस ही पैदा नहीं होते मेरी जान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ अगर आप जाएं तो फेस वॉश लाजमी परचेज करके आए। और अगर फेस वॉश आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे हमें प्यारी अलीशा ने बताया कि हमारे यहाँ फेस वॉश नहीं मिल रहा है, उनके हाँ भाई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही आप भी बता दिया करें कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कौन से प्रोडक्ट की कमी है, ताकि वो अवेलेबल करा दिया जाए, आपके लिए आसानी से हो जाए कि बस आप जाएं और परचेज करके आ जाए। तो ये चीज भी आप लोगों को नंबर्स बताए जाते हैं जिनके ऊपर आप रापता करते हैं और फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को और कहां से मिलेगी डी स्किन का फेस वॉश परचेज करना चाहते हैं कहां से मिलेगा, तो आपको बता दिया जाएगा या फिर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके जी, तो नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर सारा नोट रखा करें। नंबर है, पहला नंबर है 0332738439। बड़ी 300 73 84 300 नंबर, आई नो नंबर आहे 03 12 50 25 907। बड़ी 312 50 25 970 ही बई नंबर तव्हां डायल करे सघो था। बाकी उन्हनि माण्हुनि जे तरफ़ बि अचूं जेके भई असांखे ॿुधनि पिया डेरा अला यार खां, डेरा अला यार में भी हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से सुना जा रहा है। तो वैसे तो ये बात है कि डेरा अला यार में ना आप लोगों को हर अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर, मार्केट में, अपने किसी भी छोटे मोटे जनरल स्टोर्स में आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये दीपक भाई ने अवेलेबल करा दिए हैं। हमारे बहुत अच्छे जनाब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दीपक भाई, उनकी मेहनत को उनकी अजमत को सलाम है जनाब। इतनी मेहनत से और शिद्दत से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते जा रहे हैं। तो दीपक भाई ने डेरा अला यार में सब तमाम शॉप्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा रखा है। तो आप जरूर से अगर वहां से हमें सुन रहे हैं डेरा अला यार से, तो मार्केट जाइएगा, चक्कर लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। लेकिन अगर वो लोग जो कि भाई नहीं चाहते कि भाई हमें नहीं पता कि कहां पर अवेलेबल हैं, कहां से मिल सकते हैं, तो आप लोगों को दीपक भाई का नंबर भी बता रही हूं साथ साथ, उसके ऊपर आप रापता कर सकते हो। रापता करने के फौरन बाद दीपक भाई आप लोगों को गाइड कर सकता है कि आप कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ओके जी, सो नंबर है 03 12 46 111 90, 03 12 46 111 90। ये नंबर है जो कि दीपक भाई का है, आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात ले सकते हैं कि कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
और जनाब इस वक्त दीपक भाई हमें सुन रहे हैं, उनके प्यारे बेटे हैं मेहरवा। मेहरवा इतना खूबसूरत नाम है, कसमें क्या बात है। तो उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेहरवा को और दीपक भाई दोनों को वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों की इतनी मेहनत शामिल है, तो आपकी जनाब मेहनत को अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देगा, और ये मेहनत का आपको फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। और आप ऐसे ही सच्ची दिल से, सच्ची मेहनत से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से मेहनत करते रहिए। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो भी जनाब लगाकर अच्छी और खूबसूरत हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों को पता है जो लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाने से ये भी चीज आप लोगों को टेंशन नहीं कि भाई हमारी स्किन खराब हो सकती है या फिर क्या मसला हमारी सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। आप हर स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, मर्द हज़रात ही लगा सकते हैं, खवातीन ही लगा सकते हैं। और जनाब ये भी कोई टेंशन नहीं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम लगाएं या ना लगाएं। कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो, हर स्किन के ऊपर आप बिल्कुल लगा सकते हैं और हर मौसम में भी लगा सकते हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और इनका अलावा प्रोग्राम जे बे कलाक में अच्छी वया है तो तमा के चौथा भली करी आया तमा जो मोहब्बत हूं आयन बाबा तमा कनी कनी वाकी पानी हुजन जो सबूत दे सरी ना करे असा के खबर हो जे तो तमा जिंदा आयो। आई जेको अज मा तमा का सवाल पुछवा है, सवाल बिल्कुल आसान आई आसान खां भी आसान पुछवा है। तो तमा मुखे बुधायो वो केड़ो जानवर आ है जेको पानी में त रहंदो आ पर वो मच्छी ना है। हां जी वो फिश ना है। आई हां तमा चवंदा त लगंदो त फिश जी आए पर फिश आए कोन। तमा बुधायो मुखे जल्दी जल्दी 888 नई फेसबुक ते तमा मुखे जॉइन ना हलो जेरे तमाज ला राडू बलो फायसाली जो गानो हलायो आहे वाइसा जो गानो बुधू था गाने से गडो गड तमाचा कुछ मैसेजेस आए उन तरह भी अचू था तमा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो। आई यू वाला वाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन लगाई हाँ भाई उनका नाम ही इतना प्यारा है, देख लीजिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके नाम की वजह से कितनी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो जान आ चुकी होगी।

मैसेजेस के जाने भी आते हैं, साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, बातें भी करेंगे जी आप लोगों के साथ, और हमारी फजली हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और माय स्वीट बेस्ट आज शहजादी सिस्टर सजरा मुस्कान, कैसी हो डियर स्वीटी? सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से, और आपको वेलकम कहते हैं हमारी प्यारी फैजली। और जवेरिया भी हमारा शो सुन रही है, हमारी प्यारी जवेरिया जो है वो भी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है, और जवेरिया को भी हम वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ है सूरन जो साथी सावन चांडियो शहर सजावल जूने जो बाजी तवां जो शो वीआईपी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम कसम सा भली आहे चौथा आई चाचो है तवां गानो में लिखियो है मुझे ख्याल में जी बिल्कुल समझ जो गानो तवां के बुधरा वेंदो तां जी डेडिकेशन आहे कासिम बंगलानी सिकंदर चांडियो आसिफ चांडियो ओके हो गया जी प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। मकसद मला मेरापुर से कहते हैं कि आदाब आदाब डी स्किन ब्यूटी शो में मुझे मास्टर मंजूर का गाना तो सुना दे। ओके जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना भी लगाएंगे, लेकिन ये मुझे ये बताएंगे आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई है। और सजाद अली रुस्तमानी भाई हमें सुन रहे हैं मातली से कहते हैं बिल्कुल सजाद भाई तुम सही चढ़वाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम से तुम्हें मोहब्बत आए बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारा इस्तेमाल कई आए तुम्हें दादा वाला रिजल्ट भी मिला है, सो इस्तेमाल करता रहो अना पति का खूबसूरत ही सोना सोना थींदा रहो। वोट मोमन तैयार थेबू का हबीबुला थेबू भाई कहते हैं आरजे सदरा मुस्कान शो तुम्हारा जो तमाम लाजवाब है सलाम तुम्हारा।

अलावा मायरा सने प्रोग्राम बुधे पई वालेकुम अस्सलाम मायरा तवां जो मोबतुआन बाबा प्रोग्राम बुधो पया डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कयो पया दिल रु बाबी असां के बुधे पई दिलरुबा के चौथा बाबा भली करी आया है दिलरुबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आई परचेज करे वरती आए एंड दिलरुबा जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कर दी बिल्कुल समय इस्तेमाल कयो आई पाजे खूबसूरती जो ख्याल रखना कयो सही

रवि जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने एंजॉय किया. और ये बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि AI वर्जन होने वाला है. ये गाना मैंने मतलब कल ही सुना था और मुझे ये लगा था कि ये गाना मैं कल अपने प्रोग्राम में लगाऊंगी. लेकिन इस गाने की फरमाइश आ चुकी है, किशोर भाई ने गाने की फरमाइश करी है, तो हम इस गाने को एंजॉय करेंगे. और साथ साथ जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दे और मुझे बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं ये भी बताइएगा.

आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। अब मेरा आवाज साफ आ रहा है, मुझे बताएं।

0: क्या बात है जी, अगर तव्हां जी स्किन ब्रेक क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त बाक़ी माण्हू तव्हां जे लाइ बि ईअं चवंदा, तव्हां जी रीस बाबा केयर करे तव्हां जे हुस्न जो त जवाब ई कोन आहे। ऐं दी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां मर्दस रात ख़वातीन सभी लॻाए सघो था। दर्द ते लॻंदी आहे की इंसान की सबसे ख़ूबसूरत दुनिया उसके ख़्यालों की दुनिया होती है, क्योंकि वहां वो वही ज़िंदगी जीता है जो उसका दिल चाहता है, चाहे वो चंद लम्हों के लिए ही क्यों ना हो। यस, सही कहा आपने। हिदायत आपने भी जवाब दे दिया, ओके हो गया जी। अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते सलाम बहना, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, लिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चावरन जो खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, एंड चावरन जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट। उन सागत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैसे हर कतरे से चेहरे के मिले खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: आप सुन रहे हैं,
4: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾे पई. बरातूं लॻायो ऐं तव्हां पंहिंजे चहिरे खे ॾिसो, चवंदा वाह वाह वाह वाह, पहिरियां छो न पिया वठूं, पहिरियां सिदरा भाजी जी ॻाल्हि छो न पिया वञूं. खैर हाणे बि देरि कोन थी आहे, तव्हां वञो अगरि तव्हांजे घर में शादियूं थियण वारियूं आहिनि. वैसे हाणे मौसम अहिड़ो अची वियो आहे त सभिनी जे घर में तकरीबन शादियूं थियण वारियूं हूंदियूं, त तव्हां बि जल्दी जल्दी कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो. ख़ूबसूरत थियण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे. अगरि तव्हां ख़ूबसूरत थियण चाहियो था ऐं चाहियो था त कोई अहिड़ो प्रोडक्ट असां वटि हुजे जेको असांजी ख़ूबसूरती में चार चंड लॻाए छॾे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़िंदाबाद आहे बाबा.

सोना सोना थी वञो उम्मीद भाई कहते हैं शमन जो गानो हले पयो बाबा ता असा की मिरपुर खास में बुधो पया शमन जो गानो एंजॉय कयो। गदा हुसैन मल्हा लिखते हैं कि बाजी देख ले आपको मैंने 4 साल बाद कोई फरमाइश की थी वो भी नहीं। अरे भाई किसने कहा कि मैंने आपकी फरमाइश पूरी नहीं करी, मैं चली गई प्रोग्राम करके आपका गाना नहीं चला। सबर तक यो रुको जरा सबर करो गानो आए लिस्ट में ता बदना गदा भाई एडी तकड़ न कदा गयो जल्दबाजी भली न होनी तव। और कहते हैं डेडिकेट शॉपकीपर मोहम्मद बख्श मल्हा आंदल खान मल्हा बाजी उसकी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और पूरे विलेज वालों को डिस्काउंट पर दे रहा है। माशाल्लाह क्रीम बहुत बहुत खूब है आपकी तरह, क्या बात है, ये तो भाई मेरी तारीफ हो गई। गदा भाई बहुत शुक्रिया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे ये जरूर बताइएगा। अच्छा रिजवान अली भी हमारा शो सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं भाई साहब कैसे ही ठीक ठाक हैं। और समाटू कहते हैं वाह वाह वाह जुगान हुआ ये उधार जाई तो। और रशीद खोसू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं और मैं इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, नाइस प्रोग्राम, आपको सलाम, सारे दोस्तों को सलाम। वैसे रशीद भाई क्रीम का नाम तो लिखे कौन सी क्रीम लगाते हैं। और जी हमारे साथ हैं किशोर भाई, बंद कटी बैठा है खिलो खिलो बाबा अल्लाह से करे हमेशा ये तांजे लबन ते खिल जे का सलामत हो जे। बिलाल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी आप मोहतरमा, सफा मजे में आता पांजा हाल वाल जो किया ठीक ठाक आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो था कौन। सुमाटू कहते हैं कि सदरा आप झगड़ा भी करती हैं, आप तो मासूम बच्चा हो। हाँ पर मासूम बच्चा भी तो कदें कदें झगड़ा करना है ना, इट्स नॉर्मल। आई तवा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम न लगाई तो झेड़ा थींदा वड़ा झेड़ा थींदा। अच्छा तारिक भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। बिलाल कहते हैं सिक बंद करायो आजो भलो कयो अच्छी वयो। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सदरा आंगन ड्रामे में वो सजल अली कब आएगी, वो थोड़ा लास्ट में आएगी, अभी तो ये चल नहीं दे, मतलब कुछ लग रहा है कि 4-5 एपिसोड्स आए हैं तो वो लास्ट में आएगी तकरीबन, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप ऐसा कीजिए डी

बहुत खूबसूरत गाना गदा भाई की चॉइस के ऊपर हम एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड टी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कुट्टी के खाई ना लगे जो

हंसने वाली बात है। वैसे ये सही बात है, जो लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं, सताते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आप सोचते हैं कि भाई ये हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो कभी कभी रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि सिर्फ अना और खामोशी से भी टूट जाया करते हैं। और एक तरफ दिल चाहता है कि बात खत्म ना हो, दूसरी तरफ जबान पर सिर्फ एक लफ्ज भी नहीं आता, माफ कर दो। ये कहना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और हर बहस जीतना भी तकरीबन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम बहस करेंगे अपने किसी प्यारे से, किसी अजीज से, या जिसे हम शायद खोना नहीं चाहते, तो जब आप बहस करते हैं ना, तो वो तमाम चीजें जब आप कर रहे होते हैं, तो वो उस इंसान की लाइफ में जो होता है ना, आपकी वैल्यू को इतना कम कर देते, इतना जीरो कर देते हैं कि फिर आप बैठकर सोचते हैं कि मैंने क्या किया था। आपने बहस करी थी तो जब रिश्ते होते हैं ना, उनको संभालने के लिए कभी खामोश रह जाना और कभी कुछ ना कहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको हम खोना चाहते हैं, जिनके साथ नहीं रहना चाहते, फिर तो आप जरा रज के बहसें कीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, रिश्ता बचाना चाहते हैं तब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो जरूरी होता है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि भाई एक रिश्ता है जिसके अंदर आप घुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई उस रिश्ते को बचाना है। तो ये वाली सिचुएशन भी आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। और आपकी जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगा। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, मेडिकेटेड फार्मूला है, फेशियल वाली चीजें इसके अंदर ऐड की गई है। तो आप लोग घर बैठे मुनासिब सी कीमतों के अंदर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई आप इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे कि आए हाय मजे आ गए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए, चाहे आप मर्द हंस रहे हैं, चाहे

अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर जी, सदा खुश रहें और खुश आमदीद, मुस्कुराती रहें, आमीन। और सिस्टर अलन फकीर का सॉन्ग प्ले करें, सो नाइस ऑफ यू भा, मां कोशिश कंदी तां जी पसंदीन जा गाना अलाईंदा जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा तारिक भाई कहते हैं कि डिसेंट ब्यूटी पार्लर जेकब आबाद में है, हमारी व्हाइट एज क्रीम और डी स्किन सेल कर रहे हैं। अच्छा जेकब आबाद में जितने भी लोग सुन रहे हैं वो डिसेंट ब्यूटी पार्लर से जाकर भी परचेज कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बिलाल डिस ये न कर बाबा, ये न कर, स्किन ब्यूटी क्रीम वी अचो। उम्मीद भाई कहती असा क्रीम यूज को सदा बाजी जुलरी मीरपुर खास का उम्मीद लीला शारी भा कयो आई तमाम जले असा मीरपुर खास में अवेलेबल भी कराई छड़ी है। रशीद भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कई है, ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करना रहो। किशोर भाई कहते हैं कि आमीन हान अल्लाह सही जरूर सोची। वाकई वाकई मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। और कहते हैं हाँ जी वो सही है, ड्रामे की बात कर रहे हैं, ओके ओके। बिलाल कहते मोहतरमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठा पो उन सा छा थी दो उन सा तमा खूबसूरत थी वेंदा, तमा सोना थी वेंदा, तमा जे चेहरे ते जेके रिंकल्स अची वया है, एकनी निशान आए में या कुछ भी आए, रंगत सांवरी थी वया है, तो वा चिट्टी थी वेंदी, गोरी थी वेंदी, तमा सोना थी वेंदा, समझो ता कुल मिलाए कटे सटे। सो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था।

क्या बात है। बाकी साइंस जी तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना तो ते भी बमा आई नो आशिक थी वेंदो तुम एतरा सुना थी वेंदा मान तुम खा पुछना दसो त सही हाल अहिवाल एतरी खूबसूरती कान आंदी तो उनन के ता बुधाए बाबा ही कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा असानी पूरी टीम मेहनत करे पई तमा जले हर जगह ते वनी वनी वो अवेलेबल कराइन पया तमा जो फर्ज बन जे तो तमा ट्राई करी दिसो ना ता खबर पंदी त एतरो सिदरा आखिर मथो छोती हण तो बाबा जाहिर गाला प्रोडक्ट में दम आहे आई प्रोडक्ट कम जो आहे तनी ता के बुधायु था न त छो बुधायो आ सोचण वाली गाल अच्छा रमजान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ दर्द दिल के थी चंदा मैं भी देखती हूँ ड्रामा जी देखी अच्छी बात है अच्छा हशर अजीम कहते हैं मगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं आपको किसने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पता नहीं कैसे कैसी चीजों के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है क्या जानते हैं आप अच्छा हिदायत लगे थे प्रोग्राम देखो और फरमाइश देखो वही मैं सोचती हूँ कभी कभी लोग ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश कर देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि भाई साहब ये गाना मुझे लगाना है हाँ जी लेकिन हम लगा भी देते हैं उम्मीद भाई कहते हैं कि बाजी सिदरा मुझे तरफा चाचा खाले जूड़ी जो को वेलकम करो ज्वेलरी मीरपुर खास खां उम्मीद अली लाशारी सलाम चाचा खालिद के किशोर कुमार के चोवन कुमार के ओके हो गया जी वैसे चाचा खालिद मुझे नजर नहीं आए पोस्ट पर शायद कमेंट किया था वो करके शायद डिलीट कर दिया पता नहीं तो चाचा अगर सुन रहे हैं तो वेलकम कहते हैं उनको भी अच्छा बिलाल कहते सुना थी विंदा सिंह डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करे पो छाती नो पो तमांजी शादी थी वेंदी यस फुल एंड फाइनल समझो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जिन्हें शादी कोन थी है तुम्हारी शादी थी वेंदी और बाकी जिनके घर में शादियों थियण वाली है तो वे भी ट्राई करे सकन था छो तो तुम्हारा बाबा ये फेशियल या ब्लीचिंग के चक्कर में न पो तुम्हारे हथ में हाँ अड़ो मैजिकल प्रोडक्ट अची वो है जो तुम्हारे खूबसूरती के बधाए छो तुम्हें सोनो प्यारो गोरो चिटो बनाए छो सो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लाजमी ट्राई कर दिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूलो है तो टेंशन भी नहीं तो स्किन खराब थी वेंदी या सेंसिटिव स्किन से लगाए सकूं था या ना लगाए सको तमा हर स्किन के मथा लगाए सको था हर कोई लगाए सके तो टेंशन फ्री थी करे लगाए सको था टमाटू कहते हैं कि सेठ ये सॉन्ग किसका फेवरेट है मास्टर मंजूर का ये मैंने एवं ही लगा लिया था किसी ने मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइश कर दी तो उसके बदले में

हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए।

बाबा शादी थी वेंदी दिल नंढी न कयो तांडी स्किन ब्यूटी क्रीम त इस्तेमाल कयो पो चओ बियो गाली वरी पो कंदासी या लगायो त सही खबर पए वत डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केडो जबरदस्त रिजल्ट मिले पयो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न त उहा तव्हां हर मौसम में बि लॻाए सघो था ऐं राति जे टाइम लॻाईंदो जंहिं महिल तव्हां सुम्हण वञो लॻाइण खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो डी स्किन जे फेस वॉश सां सही आहे जॾहिं तव्हां इहे सभु चीज़ूं कंदा पोइ तव्हांखे अहिड़ो वाह वाह रिज़ल्ट मिलंदो वाह वाह रिज़ल्ट सम्झो था सभु तव्हांखे ॾिसी पुछंदा त छा पिया लॻायो छा पिया कयो ॾाढा इहो महांगो फेशियल कराया आहियो पर तव्हां हुननि खे चइजो बाबा मुनासिब क़ीमतुनि में असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली आहे जंहिंजो इस्तेमालु करे असांखे फेशियल वारा रिज़ल्ट मिली विया आहिनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद जी मैं वही सोच रही थी ये गाना कौन से गाने की कट पर है लेकिन ये आपने बता दिया आपके प्यार में ये बात है गाने ना सुनो तो फिर गाने सारे भूल गए हैं अच्छी बात है

0: राजा दर्द दिल कहती है कि जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और वजह आप हो. अच्छा
1: ओके समझ गया समझ गया.

जी जी डीज स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर हम निखरने लगे. So, आप भी लगाइए, आप भी निखर जाएंगे. इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाजत. वही तासा मुझे मुलाकात है पई जी पंजे बजे वाले प्रोग्राम में. सो पंजे बजे वाले प्रोग्राम मुख्य ज्वाइन करना आई किथे का गलती थी, मुझे तो माजरत कहूं था. तो फीडबैक रही थी वो गानों रही थी सबनी का माजरत कहूं था. सो मोकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत साल सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: Sindh ki ho, to awaaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: जो शहर बैंजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
1: GFM 90.8
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बेरोनों की स्किन और इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चार अंजू खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product.
5: गवर्नर राज या एमरजेंसी केपीए की सूरत हाल से सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत हेठ आम इजलास कुछ देर में शुरू थियण वारो ऐवान सदर में थींदड़ इजलास में वजीर अजम शहबाज शरीफ वफाक वजीर ए कानून माहिर शिरकत कंदा कानूनी माहिर केपीए में आइनी ए कानूनी सूरत हाल से ब्रीफिंग दींदा पीटीआई के रवैये जो भी जायजो वरतो वेंदो जरियन जो चवण है त केपीए के मौजूदा सूरत हाल से गौर करण बाद आम फैसला कया वेंदा हर वक्त इंतिशार ए गारन की सियासत नथी हली सके केपीए में कुछ भी सुठो नथी रहयो आए पीटीआई पाबंदी मड़ल टीटीपी जी बी टीम आए सुध समा वारे वफाकी वजीर अतातड़ चयो आए त केपी हुकूमत पुलिस के मजबूत करण लाए तैयार ना है सेफ सिटी कैमराओं भी न लगाए रही आए सूबो बदमनी जे वरचड़ियल आए ही इंतिशार पखड़े रहा है 13 साल दौरान पीटीआई केपीए की खूबसूरत भी खत्म कर छी आए पीपल्स पार्टी गवर्नर राज जड़ी कें भी कदम के हक में ना है पीपल्स पार्टी केपीए में को भी गैर आइनी कम थियण न दींदी पीटीआई के सोचणो पवंदो त वो मुल्क केॾां वठी वञी रहा आहिनि सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सूबे में कणक जी खोट न आहे अटे जे क़ीमतुनि में वाध जा कारण कणक जी खोट न पर तेल जे अघनि में वाध ऐं ॿिया आहिनि वॾे वज़ीर खिरपुर में रियासत जे अॻूणे वाली मीर मुराद अली टालपुर जे वारसनि सां त्याज़त बि कई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नेशनल आई टी पार्क जो इफ्तिताह करे छॾियो तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आई टी पार्क नौजवान लाइ तरक़ीअ जा नवां दग खोलींदो नेशनल आई टी पार्क मुल्क जे तरक़ी ऐं खु़शहालीअ लाइ बि आम साबित थींदो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: Finally, ab thoda me time banta hai. Haan to aur kya sara din function mein busy rahi hain hum. Ab skin ki care kare kal barat pe bhi jana hai. Tum strawberry wali वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
8: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
9: अजरक के रंगों से रंगी
10: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
9: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
10: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

the end, till the end. You can dance, you can jam, you can do it till the end. You can do it till the end, till the end. सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर
4: टेक्नोलॉजी जी दुनिया में महारती असल ताकत है। सऊदी इतिहादी फौज जा यमन में हुसैन के थाकन ते हमला 136 फौजी हदफन के निशानों बढ़ाने की दावा। सऊदी इतिहादी फौज जो चवना है हमलन जो मकसद हुसैन के बैलिस्टिक मिसाइल वाली सलाहियत के खत्म करना है। हुसी बागिन हमलन की तस्दीक कर छी। अमेरिका रूस का डीजल वठण जो ऐलान करे छो। रूसी डीजल ते लगायल पाबंदियों भी मुअत्तल करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पुटिन सा फोन ते गाल बोल बाद रूस का तेल वठण वाले मुआदे जो ऐलान कयो। ट्रंप चयो तो रूस जल्द अमेरिका के 30 लाख टन डीजल फराहम कंदो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जी अमेरिका ते रूस का डीजल वठण ते तनकीद। ज़ेलेंस्की चयो तो अमेरिकी फैसलो यूक्रेन जंग में वाद जो सबब बणबो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: करना चाहिए लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क को जब दहशतगर्दी इतनी फेस कर रहे हैं वो किस तरफ लेकर दहशतगर्दी से जो हमें नुकसान हुआ है हमें पता
4: पीपल्स पार्टी गवर्नर राज जड़ी कहम भी कदम के हक में ना है पीपल्स पार्टी केपीए में को भी गैर आइनी कम न थन दींदी पीटीआई के सोचो पवो तो वह मुल्क केदा वी वही रही है सखर में मीडिया से गालंदे वे वजीर मुराद अली शाह तो सूबे में कणक की खोट ना है अटे की कीमत में वाद जा कारण कणक की खोट न पर तेल के अगन में वाद बयान वे वजीर खैरपुर में रियासत के अगुणे वाली मीर मुराद अली टालपुर के वारसन से भी ताजित कई

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News. अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: चिकन ज्यादा कि कुछ जाती है और इतना डरता हूँ कि मिलने से दिल कहीं तुम खो ना जाओ और अब दिल से सिर्फ यही आवाज आती है, यही आवाज आती है।
1: आंखों में बस जाओ, दिल में समा जाओ ना।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे
3: ऐ बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइक छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट ड्राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज, सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।